जेवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्हीं लिए रहाओ। कोड पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आशा

चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रता सच रंग, इको नाम आधार। बिखिया रंग कुड़ावया, दिसन सबे शार, हर अमृत बूंद सुहावनी, मिल साधु पीवन हार। वण तिण प्रभ संग मौलिया, समरथ पुरख अपार, हर मिलने नो मन लोचदा, कर्म मिलावन हार। जिनी सखिए प्रभ पाया,

जुगो जुग अटल, चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर, शब्द गुरु बाणी के बोहित।

जन्म जन्म कह कहल बेख दुख उतरे गुरु नाम दी होर न लाथा मेरे हीरे रतन नाम हर बसिया गुर हाथ तरियो मेरे माथा जन्म जन्म कह कहल बेख दुख उतरे गुरु नाम दी होर न लाथा मेरे मन भज राम नाम सब अर्था गुरपुरे हर नाम दड़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूड़ पै है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण सेवे कबहूं तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाथा मोको की जे दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले को गुरे अंचल दीजे जन नानक चले मलंथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले को गुरे अंचल दीजे जन नानक चले मलंथा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह गुरु सवारियो बड़ी कृपा हुई अज सावन का महीना आरंभ होया और आप संगतां ने अमृत वेले तो शुकराने वजो गुरु चरणों के भौरे बनद्या है गुरु के दर्शन दारे किए है सजे दीवाना विच हाजरियां भरिया कीर्तन कथा के प्रवाह चले ने भाई साहब के जथे का धन्यवाद आप सब का भी धन्यवाद जिन्होंने हाजरियां भर के लाहे प्राप्त किए ने गुरु चरणों में अरदास बेनती हुई है सतगुरु ने पवित्र हुक्मनामे बख्शे जो आप श्रद्धा न सरवण किए ने गुरु कृपा करे आप सब न चढ़ दिया कला बन अज सावन का महीना आरंभ होया उदा जो उपदेश है मैं तुहाडे नाल सांझा जरूर करूँगा उस तो पहला आपां अज दा जो सतगुरु ने बख्शिश किया होया हुक्मनामा इस नूं असीं समझण दा यतन करिए और सब तो पहला तो आपां मन नूं इह पुछिए कि अज मालिक की कृपा नाल साडे ते की बख्शिश होई है की रहमत होई है आपां की अज गुरु की गोद विच बह के आपां की प्राप्त किया की सुनिया अगर महाराज की कृपा ना आप बैठे हैं तो सानू ये तू प्राप्त की होया गल इत निबड़नी है गुरु अर्जन महाराज गुरु रामदास जी महाराज का पावन पवित्र उचारण किया मुबारक शब्द है सब तो पहला तो बख्शिश करते हैं कि मेरे मन भज जिन्नी भी बाणी है गुरमुख पैरो मन में संबोधन की है तो एक मन ही है जो मनुख का टिकता नहीं कई तो हूँ भी कला पिया होना भी बाबा जी हटन चलीए पैंदा ना और गमा करना कई लगा ही नहीं है बैठे हैं तो तुर पे मन नहीं खिलोण देता तो खिमा करना सारी गल ही मन दी है तो जे मन में असी टिका लिया ना तो अचरे चरे तो सिद्ध हुई सिद्धि तो बुद्ध पाई प्रेम के सर लागे तन पीतर ता ब्रह्म काटिया जाई क्योंकि अचल ये चलता ही नहीं ये रुकता ही नहीं जे कि रुक जाए तो मालिक की कृपा हो जाए पातशाह ने इसे करके रोज साड़ी बाणी दे एक शब्द कर दे कि मन जीते जग जीते आपा पता की कर रहे हैं आपा सारे गुरु नूं मना रहे हैं कि गुरु साड़ा मन जाए जिन्ने कर्म असी करते हैं गुरु नूं मनाउण लई करदे भई गुरु खुश हो देखो बाहर लिखा कि जिन्नियां रस्ता वस्ता उहदे टेबल ते रखो लिखा ना पर तुसी दसो किते भी जांदे जो लिखिया उहदे मुताबक तुसी सारे कर्म करदे जे पर एक गुरुद्वारे दे विच असीं जे सामने भी बैठे हुई है ना तो सानू किसे ने नहीं पुछना बाबा जी कित्थे साडा पाठ चलदा फिर बाहर चढ़ असीं तो बैठे रहे उत्थे साडे कोल पाठी नहीं आया भी तुसीं आण के पुछो सानू भी साडा प्रोग्राम कित्थे है नहीं तो बोर्ड ते लिखिया हुंदा पर हुंदा की है सानू ये भी जे असीं इत्थे बाबा जी दे कोल आण के आ रस्ता वस्ता जां दुध वगैरह ते कैन ना रखे तो बाबे ने तो छकड़े ही नहीं आखो सतनाम तो बाबे नूं तो उदों ही पता लग गया जदों तुसीं तुर पे स्टोर चो लैके ना

पुन विचार। हाउ मिच नरक सृग अवतार, हाउ मिच हसै, हाउ मिच रुवे, हाउ मिच प्रिय, हाउ मिच तोवे, हाउ मिच जाति जिनसी खोवे, हाउ मिच मूर्ख, हाउ मिच स्याणा, मुख मुगत की सार न जाना।

जिन कृतै कृणा किया चिंता पे करणी ता सो कृता चिंता करे जिन उपाया जग तिस।

बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

दूध करम फोन सुरत समायण होए निराश जमाव जपह एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ एह मन ईटी हाथ करो फोन नेत्रो नींद न आवे रसना नाम जपाओ तब मथी इन बेद अमृत पावो मान संपट जेत सात सर नावन पावन पाती त्रिपत करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे

तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखनहार दयाला नानक करके गोले वाहिगुरु राग सुही महला पहला चौपदे कर पहला भांडा धोए बैस धूप देवो भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधै को दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा

ज्यों कांछी उपदेश होए, मानस मरती बार कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए।

अंत परम गत पाई। कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसार नहीं। अंत परम गत पाए, जुगो जुग टल चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर, शब्द गुरु बाणी के बोहित, दसा पातशाहियां दी जोत, साहब सच्चे पातशाह, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच सतगुर की अमृतमयी बाणी दे कीर्तन मेरे तो पहला सरवण कर रहे करवा रहे सन गुरु करके रागी सिंह। तो आओ साध संगत, समा है हुण गुरबाणी दी विचार दा। तो जिन्ने शरीर आप सतगुरां दे हजूर बैठे हो जां घरां विच मीडिया दे माध्यम राहीं सरवण कर रहे हो, विचारां नूं आरंभण तो पहला फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुबारक शब्द जिस दा पाठ मैं आप जी दे नाल सांझा कीता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंक 335 उत्ते राग गौड़ी विच भगत कबीर साहब जी दी रचना तो उचारण कीता होया दर्ज है। भगत कबीर साहब ने इस पावन शब्द दी रहाओ वाली पंक्ति विच उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे बारे ये गल आखी है कि हे मेरे सामले सोहणे राम, रब जी परमेश्वर जी, गुरु दी कृपा नाल मेरा मन तेरे चरणा दे विच जुड़ गया है। तो कबीर साहब ने वाक रखिया है, सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे। हुण इत्थे एक गल जिहड़ी खास तौर उत्ते समझण वाली भी है भी वैसे जिहड़ा राम है, जिहड़ा कृष्ण है, कृष्ण दे बारे ख्याल दिता जांदा है भी उहदा कोई खास रंग है, वह काले रंग दा सी। राम दे बारे ख्याल दिता जांदा है भी वह सांवले रंग दा सी। पर चेता रखो सतगुरु महाराज की बाणी ने जदों रब दे रंग की गल की है तो महाराज कहिंदे ने सारे रंग तेरे ने, तेरा कोई विशेष रंग नहीं है। हुण शब्द इत्थे उन्होंने रामैया वरत्या है पर इत्थे राम है रमिया होया जिहड़ा हर एक दे विच है। इत्थे दशरथ दे पुत्र की गल नहीं है। जदों असीं किसी बंदे की तारीफ करनी होवे ते उहदा बाहरी रंग रूप, उहदा उहदी जिहड़ी दिख है उहनूं वेख के आपां इह अंदाजा लाउने आ जां आपां कहिंदे आ भी इह बंदे दीआं अखां सोहणीआं ने, इहदा नक्क सोहणा है, इहदा रंग बड़ा सोहणा है। जिद्दां जिद्दां दे असीं इनवायरमेंट विच पले हुंने आ फिर चीज़ां उद्दां दीआं असीं लाइक भी करदे आ। जिवें जिहड़े पंजाब विच पले ने उहनां नूं प्रशादा पाणी छकण दा हुंदा है, उह प्रशादे पाणी नूं पसंद करदे ने, पर जिहड़े इधर दे बोरन बच्चे ने उह बर्गर पीजे इन्हां चीज़ां नूं वध लाइक करदे ने। मतलब असर कहदा है इनवायरमेंट दा है ना, माहौल दा असर है। तो इसे तरीके नाल जे कोई कालिआं दे विच पलिआ है ते उत्थे भी कोई क्राइटीरिए ने भी काला जिहड़ा है उह सोहणा हुंदा है कि नहीं हुंदा, जिथे सारा मुल्क ही कालिआं दा है।
ਜਿੱਥੇ ਸਾਵਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਸਕਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਧੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੰਨ ਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਂਵਲਾ ਰੰਗ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਵਲਾ ਰੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਸ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,

नाम रत्ते से निर्मले गुर कह सहाय मन तन राता रंग सो रसना रसन रसाय नानक रंगना उतर जो हर तुर छोड़े लाए श्री राग महला तीजा। गुरमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना हुई आपे आप मिलाए बूझ निर्मल होवे सोई हर जियो साचा साची बाणी साच शरण आई ए होए सहज जीव साचा साची बाणी शब्द मिलावा हुए पाई रे ऐ हर भगत हिन काहे जग आया। गुरे गुर की सेवना कीनी बिरथा जन्म गवाहिया रहा आपे जग जीवन सुखदाता आपे बख्श मिलाए जी जनते कह विचारे कह को आख सुनाए गुरमुख आपे देव डाई आपे सेव कराए देव कुटम मुल बण चलद नाल ना जाहि सतगुर सेव गुण निधान पया तिस दी किम ना पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा ते सखाई। अपने मन चित कह कहाए बिन गुर अपना जाय हर जी दादा भगत बशल हाय कर कृपा मन वसाय नानक सोभा सुरदे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा तन चरणी जन जाया तन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाए विचो गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पाए गुणी निधान मां मेरे मन गुरमुख त्याय हर सोए मुख त्याय हर सोए गुर का शब्द हो मन वसा मन तन निर्मल हुए रहाओ कर कृपा कर अहया आपे मिलिया आए गुर शब्दी सलाही है रंगे सह सो पाए सच सच समाया मिल रहे न बिछड़ जो बिल बिछड़ जाए जोत पा सोथी आए अवर ना करना जाए मन तन रत्ता रंग सो हमें सदकार अहन से हृदय लभ रहे मनमुख अंध गुबार नानक नाम नानक अप मिलायन पूरा शब्द अपार पूरा शब्द अपार हृदय जनक एन सिर रब रहे निरपो नाम निरंकार नानक अप मिलायन पूरे शब्द अपार श्री राग महला तीजा गोबिंद गुणी निधान है अंत न पा जाए कथनी बदनी ना पाईए होमै विचो जाए सतगुर मिले सद पै रचै आप वस मनाए पाई रे गुरमुख बूझे कोय बिन बूझे करम कम अपने जन्म पदार्थ कोय रहाओ जिनी चाखे तिनी सद पाया बिन चाखे परम भुलाए अमृत सचन नाम है कहना किशन जाए पीव तू प्रवान पया पूरे शब्द समाए आपे देता पाई होर करना किशन जाए देवन हाल देवन वाले कह हाथ दात है गुरु द्वारा पाए जिहा की तुन तेहा हुआ जेह कर्म कमाए जस संजम नाम है बिन नाव निर्मल ना हुए पूरा भाग नाम मन वस शब्द मिलावा हुए नानक सहजे ही रंग वरतदा हर गुण पावे सोए श्री राग महला तीजा काया सद उद तप करे विचों होमै ना जाए अध्यात्म कर्म जे करे नाम ना कभी पाए गुर का शब्द जीवित मारा हर नाम बस मन आए मान मेरे पाज सतगुर की शरणा गुर प्रसादी छुट्टी है बिख पवजल शब्द गुर तरना रहा त्रै गुण सब तात है दूजा पवकार पंडित पढ़े बंधन मादा पंडित पढ़े बंधन मादा ने बूझे बिख्या प्यार सतगुर मिले कुटी छूट है चौथे पद मुक्त द्वार गुरते मार्ग पाई है चूके मुगुबार शब्द मरता उधर पाए मोख द्वार गुर प्रसादी मिल रहा सच नाम करतार यह मनुआ अस बल है छड़ना कितने उपाय दूजे पाए दुख लाइंदा बहुती दे सजाए नानक नाम लगे सुबरे होमै शब्द गवाए

आरुह सोप्रप्रीतम मनवसाय सोप्रप्रीतम मनवसाय सबसे दे आधार प्रसलना अपना तनका सबले हार जाओ मन तन अर्पी सिर दे तनका लागा पाए जिनी एक पछाणया दूजा पव चुकाए गुरमुख नाम पछाण गए नानक सच समाए श्री राग महला तीजा हर जी सचा सच तू साहब केशे तेरा चीरा लख चौरासी पसते फिर बिन गुर भेटे पीरा हर जी बख्शे बख्श लै सूख सदा सरीरा गुर प्रसादी सेव करी सच गैर गंभीरा मन मेरे नाम रते सुख होए गुरमति सलाही है दूजा वरना कोए राहो धर्म राय नो हुक्म बै सचा धर्म विचार दूजा पाए दुष्ट आत्मा ओ तेरी सरकार अध्यात्मी हरगुण तास मन जपे कुमरार तिनकी सेवा धर्म राय करे धन सुवर नहार मन के बिकार मन तज मन चूक मोह अभिमान आत्मा पछन सिज नाम सम्मान बिन सतगुर मुक्त ना पाईए मनमुख फिरे दिवान शब्द न छीनै कथनी बदनी फिर बिख्या महे सम्मान।

दुख ना व्यापै कोई राव रत्न पदार्थ मणका सुना रूपा खाक मात पिता सुत बंध पा कूड़े सबै साख।

अंतर होमे कूर भक्ति ना विहुण आवे वजह वंछ पूरा राख लो प्रभु रखन हारू जी जंत कर रहा कर दया बिन प्रभु कोई ना रखन हारू मां बिकट जम पया नानक नाम ना विसरू कर अपनी हा खर मया श्री राग मल्ला पंजवा मेरा तन अरु तन मेरा राज रूप मैं देस सोदारा बिनता नेक बौद्ध रंग और वैस हर नाम हृदय ना वसे कार्य किते ना लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साध की गुरु चरणी चित लाए राव।

जस गुण रमण जित कूट जन्म मंजन स्नान रसना उचरै गुणवती कोई न पूजै दान दष्ट धार मन।

पंजवा रसना सचुआ सिमरिए मात निर्मल होए मात पिता साक अगले तिस बिन अवर न कोय मेर करे जय अपने सचा न विसरै सोए मेरे मन सचा सेव जिच रसासु बिन सच

सगल पदार्थ तिस मिलाए, जिन गुरु डठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा, शिवड पागी माए, गुरदाता समरत गुरु, गुर सब मै रहा समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुरु।

चरणी मटै दुख अंधार, सासन तूक दया कमावै एह करणी सार। आप चूड़ सब हुए रेणा,

इहु विचार बन साधु संगत रत्या माया मोह सवसार मेरा साजन हर हर नाम समाल साधु संगत मन वसै पूरन हो वै गाल राव और समरथ पार गुर वड भागी दर्शन हो गुरे गोचर निर्मला गुर जेवड़े अवर न कोय गुर करता गुर करण हार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बार कछ नहीं गुर किया लुड़ै सोए गुर पदारत गुर प्रजात गुर मनसा पूर्णार गुरदाता हर नाम दी उदरै सब संसार।

टूट न आवी। तेरे जुगो जुग है पंडार महला पहला, सभी कंत महिलिया सगलिया कर सिंगार, गणत गणा बने आया सोहा वेश विकार, अखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुआर, हर जियो इो पिर रवै नार, तुदे भावन सोहा गणी अपनी।

गुरमति प्रगास होए सच रह लेवलाए कते काल न सच रह ज्योति जो समाए। तू है साजन तू सो जान तू आपे मिलनार गुर शब्दी सलाई है अंत न पारावार। तिथे काल न अपड़ै जिते गुर का शब्द वार हुक्मे सब उपजै हुक्मी कार कमा है हुक्मी कालय वस है हुक्म सच समाय। नानक जोतिस भावै सुथिया

मग जूटा जूट बोलना यूं कर सोचा होए। बिन अब शब्द न मांझिए सचे ते सच होए, मुंदे गुणहीन सुख खे फिर लिया रस मानसी, सच शब्द सुख ने राव फिर परदेसी जीतिए, धनवाड़ ही चूरे ज्यों जल तोड़े मछली, करण पलाव करे फिर भावै सुख पाईए, जाया पै नदर करे पर सलाही अपना, सखी सहेली नाल तन सो है मन मोहे है, रती रंग निहाल शब्द सुहावी सोहणे फिर रावै गुण नाल, कामण काम न आवे खोटे अवगुण यार, ना सुख पाईए सोहरे झूठ जली बेकार, आवण वंजन डाकणो छोड़े कंत विसार, फिर की नार सुहावणे मोती सो कित सार, फिर कह काम न आवे बोलै बाद फादल बाद, दर कर टूई ना लै छूटे दूजै साध, पंडित वाचै पोथिया ना बूझै विचार, अनको मती दे चलै माया कै का व्यापार, कथनी झूठी सब पवै

रते गुणता साचरते से जिन गए ओम सद बलहार जासु चौ जुग मैले मल परे जिनको नाम ना होई भगति पाए वे हुणिया मौका ला पत खोए जिने नाम विसारिया औगण मुठी रोए खोजत खोजत पाया नर कर मिले मल मिले मिलाई आप छाणे कर वसै ओ मैं तिस ना जाई नानक निर्मल उजलै जो रतै हरनाए श्री राग महला पहला सुन मन भूले बावरे गुर के चरणी।

संत सभा सुख उपज गुरमुख नाम आधार खिन मैं उपज खिन मैं खपै खिन आवै खिन जाई शब्द पछाणै रव रै ना तिस काल सताई।

लिखाई, कार कमावै सच की, लाहा मिलै रजाई, पूंजी साची गुर मिलै, ना तिसु तिल ना तमाई।

गुरमुख कथो कत आवै जाय पवाइय पाइय कृत कमाई पूर्व लिखिया को मिटिय लिखिया लीख रजाय बिन हर नाम ना छुटिय गुरमुख।

माई माया मोह चुकाया गुरमति सहज सुभाए बिन शब्द जग दुखिया फिरे मन मुखा नू गई खाए। शब्द नाम ते आई है शब्द सच समाए माया भूले सिद्ध फिरे समाध न लगे सुभाए। तीने लोई व्यापत है अदक रही लपटाए बिन गुरमुक्त न पाई है ना दुबदा पाया जाए। माया किसनु आखी है क्या माया कर्म कमाई दुख सुख एहो जियो बद है हुम मैं कर्म कमाए। बिन शब्द भरम ना चुके ना विचो हुम मैं जाए। बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द थाए न पाई। शब्द हो मैं मारिये माया का ब्रह्म जाय नाम पदार्थ पाईये गुरमुख सह सुभाई। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत न होए। भगत वचल हर मन वसया सहज मिलया प्रभ सोए। नानक शब्द हर सलाहिये करम प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभ की ना आपे भरम बोलाए। मनमुख कर्म करे नहीं बूझे बिरथा जन्म गवाए। गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसै मन आए।

ਮਾਜਮਾ ਲਾ ਚੌਥਾ ਮਧਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਣਾ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸੇ ਜੀਓ ਹੋ ਮਨ ਤਨ ਖੋਜੀ ਭਾਲ ਭਲਾਈ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਰਾ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਦਸਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਜਲ ਮਿਲ ਕਮਲ ਵਿਖਸੇ ਜੀਓ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਬਿਰੋ ਲਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲ ਰਹਿਸੇ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਗੁਣ ਪੜੀਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਏ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਗ ਭਉ ਜਲ ਦੁੱਤਰ ਧਰੀਏ ਜੀਓ ਆਉ ਸਖੀ ਹਰ ਮੇਲ ਕਰਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾ ਮੈਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸਖਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹਰ ਨਰ ਹਰੀਏ ਜੀਓ ਮੇਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਾਣੇ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਬਿਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ਮੈਂ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਦੀਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਧਰੀਏ ਜੀਓ ਹਮ ਚਾਤਰਕ ਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਬੂੰਦ ਮੁਖ ਪਾਈ ਹਰ ਜਲ ਨਿਦ ਹਮ ਜਲ ਕੇ ਮੀਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਲ ਬਹਿਨ ਮਰੀਏ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਲਗਾਈ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾ ਪੂਰਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਮਿਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਭੀਜੈ ਜੀਓ ਮਿਲ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮਨ ਭਾਵੇ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਜੀਓ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ ਭਾਗਹੀਣ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਕਾਵੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਜੀਓ ਮੈਂ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਹਰ ਦੈ ਨਾਮ ਦਇਆ ਮਨ ਧਾਰੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੀਠਾ ਮਨ ਭਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਨ ਭੀਜੈ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਹਰ ਰਸ ਪੀ ਆਇਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੀ ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਟੁੱਲ ਟੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀਓ ਆਵੋ ਸੰਤ ਮੈਂ ਗਲੇ ਮਲਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮਨ ਦੇਵਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀਓ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਤ ਮਲਾਇਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਰਸ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਾਗਹੀਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਨਿਤ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀਓ ਆਪ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਮਲ ਹੋਮੇ ਵਿਖਿਆ ਸਭ ਨਿਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਹੱਟ ਪਟਣ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਹਰ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੌਦਾ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹੋਣ ਗੋ ਹੋ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਮਨ ਨਾਮ ਵਸਾਈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਰਸ ਕੀ ਚੈ ਜੀਓ ਧਨ ਧਨ ਹਰ ਜਨ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਜਾਏ ਪੁੱਛਾਂ ਜਨ ਹਰ ਕੀ ਬਾਤਾ ਪਾ ਮਲੋਵਾਂ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਪੀ ਚੈ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੀਚੈ ਜੀਓ ਹਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤ ਪੁਰਖ ਮਲਾਈਐ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਨਾਮ ਪਰੀਚੈ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੀਆਂ
जो मेरे प्रीतम दसे तिसके हो वारियां। मैल सत संगत लद्दा हर सज्जन हो सतगुर विटों को माइया जियो। जय जय देखा तै तै स्वामी तू घट घट रहा अंतर जामी। गुर पूरे हर नाल दिखाया हो सतगुर विटों सदवारिया जियो। एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया। सब एका जोत वरते भिन भिन ना रली किसे दी रलाइया। गुर प्रसादी एक नदरी आया हो सतगुर विटों वताया जियो। जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखां के मन प्यारी पाणी। उपदेश गरे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर उपकारिया जियो। सत चौबदे महले चौथे के माज महला पांचवा चौपदे कर पहला। मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई बिलप करे चातर की न्याई। त्रिखा न उतरे शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हों कोली जियो हों कोल कमाई गुरदर्शन संत प्यारे जियो। राओ तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारंग पाणी। धन सुदेश जहां तू वसिया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। हों कोली हों कोल कमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो। राओ एक घड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुण कद मिलिए प्रिया तुद भगवंता। मोए रहण ना विहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो। हों कोली जियो कोल कमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। राव भाग हुआ गुर संत मलाया प्रभ अवनासी घर मैं पाया। सेव करी पल चसा न विछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो। हों कोली जियो कोल कमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो। राव राग माज महला पांचवा। सार उत सुहावी जित तुद संभाली सो कम सुहेला जो तेरी काली। सो रिदा सुहेला जित रिदे तू वुठा सबना के दातार जियो। तू सांझा साहेब बाप हमारा नौ निद तेरे आखुट भंडारा। जिस तू दे सो तृप्त गाए सोई भगत तुम्हारा जियो। सब को आसे तेरी बैठा घट घट अंतर तू है वुठा। सबे सांझी वाल सदाएन तू किसे ना दिसे बारा जियो। तू आपे गुरमुख मुक्त करायण तू आपे मनमुख जन्म पवायण। नानक दास तेरे द बलहारे सब तेरा खेल दसारा जियो। माज महला पांचवा। अनहद वाजे सहज सुहेले शब्द आनंद करे सदके लय। सहज गुफा मैं ताड़ी लाई आसन ऊच सवारिया जियो। फिर घर अपने ग्रह में आया जो लड़ींदा सोई पाया। तृप्त अगाए रहा है संतो गुर निरपो पुरख दिखारिया जियो। आपे राजन आपे लोगा आप निर्बाणी आपे भोगा। आपे तख्त बहे सच न्याई सब चूकी कूक पुकारिया जियो। जेहा डिठा मैं तेहो कह तिस रस आया जिन भेद लया। ज्योति ज्योत रली सुख पाया जन नानक एक पसारिया जियो। माज महला पांचवा। जित घर पैर सुहाग बनाया तित घर सखिए मंगल गाया। अंत बनोद तिते कर सोहे जो तन कंत सगारी जियो। सा गुणवंती सा वडभागण पुत्रवंती सील संत सीलवंत सुहागण। रूपवंत जा सुगड़ बचखण जो तन कंत प्यारी जियो। आचारवंत साई प्रधाने सब शिंगार बने तिस ग्याने।
सा कुलवंती सा सबराई, जो पर कै रंग सुवारी जियो। महिमा तिसकी कहण न जाए, जो पर मेल लई अंग लाए। थिर सुहागवर अगम अगोचर, जन नानक प्रेम सदाई जियो। माज महला पांचवां, खोजत खोजत दर्शन चाए, भांत भांत बन बन अवगाहे। निर्गुण सरगुण हर हर ते, मेरा कोई न जियो आन मलाए जियो। खाट सास्त विचरित मुख ज्ञाना, पूजा तिलक तीरथ इसनाना। निवली कर्म आसन चौरासी, इनमें शांत न आवे जियो। आनक बरख किए जप तापा, गमन किया धरती परमाता। एक कहन हृदय शांत न आवे, बोड़ बोड़ उड़तावे जियो। कर कृपा मोय साध मलाया, मन तन शीतल धीरज पाया। प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर, हर मंगल नानक गावे जियो। माज महला पांचवां, पार ब्रह्म अपरंपर देवा, अगम अगोचर अलख अपेवा। दीन दयाल गोपाल गोविंदा, हर त्यावे गुरमत गाती जियो। गुरमुख मधुसूदन निस्तारे, गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे। दयाल दमोदर गुरमुख पाइये, होर ते किते ना पाती जियो। निरहारी केसव निरवैरा, कोट जना जाके पूजे पैरा। गुरमुख हिरदे जाके हर हर सोई, भगत अकाती जियो। अमोग दर्शन बेअंत अपारा, वड़ समरथ सदा दतारा। गुरमुख नाम जपिए तित तरिए, गत नानक विरली जाती जियो। माज महला पांचवां, कहा करना दिता लेना, गरीबा अनाथा तेरा पाना। सब कुछ तू है मेरे प्यारे, तेरी कुदरत बल बल जाई जियो। भाणे उजड़ भाणे राह, भाणे हर गुण गुरमुख गवाह। भाणे भरम पवे बौ जूनी, सब कुछ तिसेर जाई जियो। ना को मूर्ख ना को स्याणा, वरते सब कुछ तेरा भाणा। गम गोचर बिंत अता, तेरी कीमत कहण न जाई जियो। खाक संतन की दे प्यारे, आए पया हर तेरे द्वारे। दर्शन पेखत मन अगावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पांचवां, दुखत देना विसर जाए, भुख व्यापे बोबे धावे। सिमरत नाम सदा सोहेले, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड़ समरथा, जो संभाली ता साब दुख लथा। चिंता रोई गई हो पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बार कवांगी हो सब किश मंदा, देन दे तोट नाई प्रव रंगा। पैरी पै पै बौर मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। ओम बलहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे। हिरदे नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रसाला जियो। माज महला पांचवां, लाल गोपाल दयाल रंगील, गैर गंभीर बेअंत गोविंद। ऊच अथा बेअंत स्वामी, सिमर सिमर हो जीवा जियो। दुख भंजन निदान अमोले, निरपो निर्वैर अथा अतोले। अकाल मूर्त आजूनी संभव, मन सिमरत ठंडा थी वाजियो। सदा संगी हर रंग गोपाला, ऊच नीच करे प्रतपाला। नाम रसायन मन प्रत मन तृपतायण, गुरमुख अमृत पीवा जियो। सुख दुख प्यारे तुद त्याई, ए सुमत गुरु ते पाई। नानकी तर तू है ठाकर, हर रंग पार परिवा जियो। माज महला पांचवां, धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया, सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया। धन मूर्त चसे पल घड़िया, धन सो ओए संजोगा जियो। उद्यम करत मन निर्मल होवा, हर मार्ग चलत भरम सगला खोया। नाम निधान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जियो। अंतर बाहर तेरी बाणी, तुद आप कतीत आप बखाणी। गुर कया सब एको एको, अवर ना कोई होएगा जियो।
अमृत रस हर गुर ते पिया, हर पहनन नाम भोजन तिया, नाम रंग चा नाम रंग नाम चोज तमा मैं, नाम रंग नाम चोज तमासे नौ नानक कीने भोगा जियो। माज महला पांचवा, सगल संतन पै वस्त एक मांगो, करो बेनंती नाम त्यागो। वार वार जाई लखवरिया, दे संतन की धूरा जियो। तुम दाते तुम पुरख बधाते, तुम समरथ सदा सुख दाते, तुम सबको तुम ही ते वरसाए, अवसर करो हमारा पूरा जियो। दर्शन तेरे भव प्रनीता, आत्म गढ़ बेखम तिना ही जीता। तुम दाते तुम पुरख बधाते, तुद जेवड़ अवर ना सूरा जियो। रेन संतन की मेरे मुख लागी, दुरमत बैन सुको बेद अभागी। सच घर बैस रहे गुण गाए, नानक बिन से कूरा जियो। माज महला पांचवा, विसर नाई एवड़दा ते कर कृपा, भगतन संग राते दिनस रहन ज्यो। तुद त्याई ए दान मोहे करना जियो, माटी अंधी सुरत समाई, सब कछ दिया भलिया जाई। आनंद बनोद चोज तमासे, तुद भावे सो होना जियो। जिसदा दिता सब कुछ लैना, शक्ति अमृत भोजन खाना, से सुखाली सीतल पावना, सहज केल रंग करना जियो। साबुद दीजे जित विसरे नाही, सा मत दीजे जित तुद त्याई। सास सास तेरे गुण गावा, ओड नानक गुर चरणा जियो। माज महला पांचवा, सिवत सलान तेरा हुक्म रजाई, सो ज्ञान ध्यान जो गुरु तुद पाई। सोई जाप जो प्रभु जियो, पावे भाणे पूर ज्ञाना जियो। अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहब तेरे मन भावे, तू संतन का संत तुम्हारे, संत साहब मन माना जियो। तू संतन की करे प्रित पाला, संत खेले तुम संग गोपाला, अपने संत उद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन के मेरे मन कुर्ब, मेरा मन कुर्बाना, जिन तू जाता जो तुद मन भाणा। तिनके संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अगाना जियो। माज महला पांचवा, तू जल निधम मीन तुमारे, तेरा नाम बूंद हम चातरक तिकारे। तुमरी आस प्यासा तुमरी, तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यों बारक पी खीर अगावे, ज्यों निरतन तन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग ए मन पीना जियो। ज्यों अंधियारे दीपक परगासा, भरता चितवत पूर्ण आसा। मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा, त्यों हर रंग मन पीना, रंग रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गिजाया। हर हमरा हम संतन हर के दासे, नानक शब्द गुर सच दीना जियो। माज महला पांचवा, अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बिडारण हरिया। अवर साध चख सगले देखे, मन हर रस सब ते मीठा जियो। जो जो पीवे सो तृपतावे, अमर होवे सो नाम रस पावे। नाम निधान तिसे परापत, जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अगाना, जिन हर साध पाया सो नाई डोलाना। तिसे परापत हर हर नामा, जिस मस्तक पागीठा जियो। हर एक सहाथे आया, वरसाने बो तेरे, तिस लग मुक्त पै कनेरे। नाम दाना गुरमुख पाईए, को नानक वरली डीठा जियो। माज महला पांचवा, निद सिद रिद हर हर हर मेरे, जन्म पदार्थ गैर गंभीरे। लख कोट खुशियां रंग रावे, जो गुर लख पाई जियो।
दर्शन पे कत पै पनीता सगल उदारे भाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो। जाको खोजे सर्ब उपाय वड भागी दर्शन को बिरला पाए ऊचा पार अगोचर थाना ओ मैल गुरु देखाई जियो। गैर गंभीर अमृत नाम तेरा मुगत पया जिस हृदय वसेरा गुरबंधन तिनके सगले काटे जा नानक सहज समाई जियो। माज महला पांचवा प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो प्रभ दया ते मंगल गावो ऊठत बैठत सोवत जागत हर त्याये सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया किलवक काटे निर्मल तिया अंध भया निकसी सब पीरा सगल बना से परदा जियो। जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा सत करे जिन गुरु पछाता सो काहे को डरदा जियो। जब ते साधु संगत पाए गुर भेट तहो गई बलाए सास सास हर गावे नानक सतगुर ढाक लिया मेरा पड़दा जियो। माज महला पांचवा ओत पोत सेवक संगराता प्राप्रत पाले सेवक सुखदाता पानी पखा पीसो सेवक कै ठाकर ही का आर जियो। काट सिलक प्रभ सेवी लाया हुक्म साहेब का सेवक मन पाया सोई कमावे जो सह भावे सेवक अंतर बहार मार जियो। तू दाना ठाकर सब बिद जाने ठाकर के सेवक हर रंग माने जो किछ ठाकर का सो सेवक का सेवक ठाकर ही संग जार जियो। अपने ठाकर जो पहराया बोर ना लेखा पुछ बुलाया तिस सेवक के नानक कुरबाणी जो गैर गंभीर गौर जियो। माज महला पांचवा सब किछ घर में बार नाही बार टोले सो भरम पुलाई गुरु प्रसादी जिनी अंतर पाया सो अंतर बार सोहेला जियो। चिम चिम वरते अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचारा अंद बनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जियो। जन्म जन्म का विछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया सुमित पाए ध्यान गुरमुख होए मेला जियो। जल तरंग ज्यो जले समाया त्यों ज्योति संग ज्योत मलाया को नानक भरम कटे के वाड़ा बोल ना होइए मौला जियो। माज महला पांचवा तिस कुरबाणी जिन तू सुनिया तिस बलहारी जिन रसना भणिया वार वार जाई तिस विटो जो मन तन मुख अराधे जियो। तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिस अपने साजन जिन गुरमिल सो प्रभ लादे जियो। सेवड़ भागी जिन तुम जाने सब के मदे अलिप्त निर्वाणे साध के संग उन भव जल तरिया सगल दूत उन साधे जियो। जानकी सरन परिया मन मेरा मान तैन सहज मो अंधेरा नाम दान दीजे नानक को तिस प्रभ अगम अदा दे जियो। माज महला पांचवा तू पेड़ साक तेरी फूली तू सूखम हो वा अस्तूली तू जल निद तू फेन बुद बुदा तुद बिन अवर ना पालिए जियो। तू सूत मणिए पी तू है तू गंठी मेरे सिर तू है आदि मद अंत प्रभ सोई अवर ना कोई दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्वाण रसिया रंगराता अपने करतब आपे जाने आपे तुद संभालिए जियो। तू ठाकर सेव कपोने आपे तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे नानक दास सदा गुण गावे एक भोरी नदर निहालिए जियो। माज महला पांचवा सफल सुबाणी जित नाम वखाणी गुर प्रसाद किने विरले जानी
धन सो वेला जित हर गावत सुनना आए ते परवाना जियो से नेत्र परवान जिनी दर्शन पेखा से कर भले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले ओं बल तिन संग पछाणा जियो सुन सा जन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माए उधारे किलविक काट हुआ मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो दोए कर जोड़ एक बिनो करी जय कर कृपा डुबदा पाथर लीजै नानक प्रभै कृपाला प्रभ नानक मन भाणा जियो माज महला पंजवा अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी सीतल होआ मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो सुख भया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम वखाना जल थर नीर भरे सर सुबर बिरथा कोय न जाए जियो दया धारी तिन सिर जनहारे जी जंत सगले प्रित पारे मेहरवान कृपाल दयाला सगले तृप्त अगाए जियो वन त्रैण त्रै भवन की तोन हरिया करण हार खिन मैं खिन भीतर करिया गुरमुख नानक तिसे अरादे मन की आस पुजाए जियो माज महला पांजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी थाई ता पौ के हा काड़ा जियो तुमरी कृपा ते तुद पछाणा तू मेरी ओट तू है मेरा माणा तुझ बिन दूजा अवरना कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो जी जंत सब तुद अपाए जित जित भाणा तित तित लाए सब कुछ तेरा तेरा होवे नाही किछ असाड़ा जियो नाम त्याए महा सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया गुरपूरे वजी वधाई नानक जित बिखाड़ा जियो माज महला पंजवा जी प्राण प्रभ मने अदा दारा भगत जीवे गुण गाए अपारा गुण निधान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा धार जो घर ते आवै साध संग जन्म मरण मिटावै आस मनोरथ पूर्ण होवे भेटत गुरदरसाया जियो अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्यावै ज्ञानी खुदी मिटी चूका पोलावा गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो अंध मंगल कल्याण निधाना सूस सर नाम वखाना होए कृपाल स्वामी अपना ना हो नानक कर मैं आया जियो माज महला पंजवा सुन सुन जीवा सोई तुम्हारी तू प्रीतम ठाकर अत भारी तुमरे करतब तुम्हें जानो तुमरी ओट गोपाला जियो गुण गावत मन हरिया होवे अकत कथा मल सगली खोवे भेट संग साध संतन कै सदा जपो दे आला जियो प्रभ अपना साथ साथ समारो ए मत गुर प्रसाद मन धारो तुमरी कृपा ते होए प्रगासा सर्प मया कृपाला जियो सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे हे देख नानक पै निहाला जियो माज महला पंजवा हुक्मी वरसन लागे मेहा साजन संत मिल नाम जपेहा शीतल शांत सहज सुख पाया ठांड पाई प्रभ आपे जियो सब किछ बहुते बहुत अपाया कर कृपा प्रभ सगल रजाया दात करो मेरे दातारा जी जंत सब त्रापे जियो सच्चा साहब सच्ची नाई गुर प्रसाद तिस सदा त्याई जन्म मरण भय काटन मोहा बिनसै रोग संतापे जियो सास सास नानक सलाए सिमरत नाम काटे सब भाए पूर्ण आस करी खिन भीतर हर हर हर गुण जापे जियो माज महला पंजवा आओ साजन संत मीर पे अमीत प्यारे मिल गावो गुण अगम अपारे गावत सुन सबे ही मुक्ते सो त्याये जिन हम किए जियो जन्म जन्म के किल बिक जावे मन चिंदे से ही फल पावे सिमर सिमर सो सच स्वामी रिजक सब सुको दिए जियो
ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸਭ ਭਉ ਬਿਨ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਸੋ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਥੀਏ ਜੀਓ ਆਏ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਲਹਿ ਮਲਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤੀ ਲਾਵੋ ਸਚ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਸਾਈ ਮੇਘ ਵਰਸੇ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲਾ ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੰਤ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰੇ ਜਿਉਂ ਬਾਰਕ ਮਾਤਾ ਸੰਘਾਰੇ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਆਮੀ ਦੇਤ ਸਗਲ ਆਹਾਰੇ ਜੀਓ ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਦ ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਤੇ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਜੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਜੀਓ ਰਾਖ ਲੀਏ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਉਤਰ ਗਏ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆਵਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰੇ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੁਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ ਹਰ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਸੰਭਾਲੇ ਹਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ ਖਾਏ ਖਾਏ ਕਰੇ ਬਦ ਫੈਲੀ ਜਾਣ ਵਿਸੂਕੀ ਵਾੜੀ ਜੀਓ ਸੰਤਾਂ ਸੇ ਤੀ ਰੰਗ ਨਾ ਲਾਏ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਵੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਦੋ ਲੱਭ ਦੇ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਜੜ ਆਪਣੀ ਆਪ ਉਪਾੜੀ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਾਖੋ ਸਰਮ ਆਖਾੜੀ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚਾਰਨ ਠਾਗਰ ਕੇ ਰਿਦੇ ਸਮਾਣੇ ਕਲ ਕਲੇ ਸਭ ਦੂਰ ਪਿਆਣੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੂਖ ਧੁਨ ਉਪਜੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸਾ ਜੀਓ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਤੂਟੇ ਮੂਲੇ ਹਰ ਅੰਤਰ ਬਾਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਘਾਟੀ ਜਮਕੀ ਫਾਸਾ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਣੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਰਹੇ ਜਨ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਲਾਸਾ ਜੀਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਸ ਤੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮਲਾਇਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਲੇਸ਼ ਭਇਆ ਸੁਖ ਸਾਚਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੀ ਜੀਓ ਜਿਸ ਕੇ ਸੇ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਰਖਵਾਰੇ ਸੁਣੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹੀ ਠਾਕਰ ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਕਾਲਾ ਜੀਓ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰਾ ਜਲ ਥਲ ਮਈਅਲ ਸਰ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਣੇ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੀਓ ਮਨ ਕੀ ਇੱਛਾ ਪੁਜਾਵਣਹਾਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਕੀਆ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਰੱਤੇ ਰੰਗ ਰਸਾਲੀ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਰਾਸ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਓ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸੁਖਦਾਈ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾਂ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵਾਂ ਜਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿਖਾਲਾ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਸੁਖ ਸਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਬੇਕੁੰਠ ਤਤਾਈ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਾ ਜੀਓ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਆਟ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁਖਾਲਾ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਘ ਪਠਾਇਆ ਜਲ ਥਲ ਮਈਅਲ ਦੈ ਦਿਸ ਵਰਸਾਇਆ ਸ਼ਾਂਤ ਪਈ ਬੁੱਝੀ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੰਧ ਭਇਆ ਸਭ ਠਾਈ ਜੀਓ ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਣ ਹਾਰਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲੇ ਪਾਏ ਪੈਰੀ ਤਿਸੇ ਮਨਾਈ ਜੀਓ ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਨ ਭਇਆ ਗਤ ਪਾਈਐ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਤਿਸ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਠਾਕਰ ਸਭ ਤਿਸੇ ਕੀਆ ਰਜਾਈ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹੇ ਬੇਨੰਤੀ ਆਟ ਪੈਰ ਤੋਂ ਧਿਆਈ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭੇ ਸੁਖ ਭੈ ਪ੍ਰਭ ਤੁਠੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਉੱਠੇ
सहज समाध लगी लव अंतर सोरस सोई जाने जियो अगम अगोचर साहब मेरा घट घट अंतर वरते नेरा सदा अलभत जिया का दाता को विरला आप पछाने जियो ब्राह्मण ने की ए निशानी मन इको सच्चा हुक्म बजानी सहज संतोख सदा तिरपता से अंध खसम कह पाने जियो हथी दिती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब नवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माने जियो आज महला पांचवा कीनी दया गोपाल गोसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार किया तिन करते दुख का डेरा ढाया जियो मन तन वसया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसे कोई दुश्मन दूत सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश कहया सो आपे आपे बुत सियाणप किशु न जापे आपणिया संतानो आप सुहाई परब भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन का आधारो आठ पैर राम नाम वपारो सगल आनंद गावे गुण गोबिंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पांचवा सो सच मंदर जित सच त्याईये सो रिदा सोहेला जित हर गुण गाइये सा धरत सुहावी जित वसे हर जन सच्चे नाम विटो कुरबाने जियो सच वडाई कीम न पाई कुदरत कर्म न कहना जाई त्याए त्याए जीवे जन तेरे सच शब्द मन माणो जियो सच सलाण वड भागी पाए गुर प्रसादी हर गुण गाए रंग रते तेरे तुद भावे सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थान थनांतर साचा सोई नानक सच त्याईये सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पांचवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला घड़ी मूर्त सिमरत पल वञे जीवन सवरत थाई जियो सिमरत नाम दोख सब लाते अंतर बार हर प्रभ साते भैपो भरम खोया गुरपूरे देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वड ऊच अपारा बहो नौनिद नाम परे पंडारा आदि अंत मद सोई दूजा लवे ना लाई जियो कर कृपा मेरे दीन दयाला जाच गजाचे सादर वाला दे दान नानक जन मांगे सदा सदा हर त्याई जियो माज महला पांचवा ऐथे तू है आगे आपे जी जंत्र सब तेरे थापे तुद मैंने अवर ना कोई करते मैं तर उड़ तुम्हारी जियो रसना जप जप जीव है स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन ही सुख पाया सो जन्म न जुए हारी जियो नाम औखद जिन जनते पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गावे दिन राती सबल यहा है कारी जियो दृष्ट धार अपना दास सवारिया घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया एक सुवैण होर दूजा नाई बाबा नानक ए मत सारी जियो माज महला पांचवा मन तन रत्ता नाम प्यारे सरबस दीजे अपना वारे आठ पैर गोविंद गुण गाइये बिसरना कोई सासा जियो सोई सा जन मीत प्यारा राम नाम साध संग बिचारा साधु संग तजिए सागर कटिए जमकी फासा जियो चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जब अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पै जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पाणी नानक नाम वस्या जिस अंतर परवान गिरसत उदासा जियो माज महला पांचवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपया बिन से आलस रोगा जियो जाके ग्रह नव निद हर पाई तिस मिल तिस पुरब कमाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेसर प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो खिर मैं थाप उथापन हारा आप अकंती आप पसारा
लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लैन बजो गाजियो। अंचल आए सब श्रेष्ठ तराई, अपना नाम आप जपाई, गुर बोहित पाया कृपा ते, नानक तुर संजोगा जियो। माझ महला पंजवां, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा भली जाए, सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लागे जस मीठा जियो। साब परोई एक तागे, जिस लाए लै सो चरणी लागे, ऊंद कवल जस होए परगासा, तिन सर्ब नरंजन डीठा जियो। तेरी महिमा तू है जाने, अपना आप तू आप पछाणे, ओम बलहारी संतन तेरे, जन काम क्रोध पीठा जियो। तू निर्वैर संत तेरे निर्मल, जिन देखे सब उतरे कलमल, नानक नाम त्याए त्याए जीव है, बिनस्या परम पौ धीठा जियो। माझ महला पांचवां, झूठा मंगण जे को मांगै, तिसको मरते घड़ी न लागै, पार ब्रह्म जो सद ही सेवे, जो गुर मिल ने चल करना, प्रेम भगत जिस ते मन लागी, गुण गावे अन दिन नित जागी, बाह पकड़ते स्वामी मेले, जिसके मस्तक लैना, चरण कमल भगता मन उठे, विण परमेसर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांचे, नाम सचे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइये, जय सिमरत वरने चल पाइये, नानक को प्रभ हुए दयाला, तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां महला पहला, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, शब्द रंगाए हुक्म सबाए, सच्ची दरगा मैल बलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहबा, सच्चे मन पतिया मणिया, हो वारी जीओ वारी, शब्द सुहावणिया, अमृत सदा अमृत नाम सदा सुखदाता, गुरमत्ती मन वसावणिया राओ, ना को मेरा हो किस तेरा, साचा ठाकुर त्रै भवण मेरा, होमे कर कर जाए कनेरी, कर अवगुण पछोता मणिया, हुकम पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर के शब्द नाम निशाने, सबना कादर लेखा सच्चे, छूटस नाम सुहावणिया, मन मुख भूला ठोर न पाए, जमदर बद्दा चोटा खाए, बिन नाम एको संग न साथी, मुकते नाम त्यावणिया, साकत कूड़े सच न भावे, दुबदा बाधा आवे जावे, लिखिया लेख न मेटे कोई, गुरमुख मुक्त करावणिया, पेड़िए पर जातो नाही, झूठ वछुनी रोवे ताई, अवगुण मुठी मैल न पावे, अवगुण गुण बख्शावणिया, पेड़िए पिन जाता प्यारा, गुरमुख बूझे तत् विचारा, आवण जाना ठाकर हाए, सच्चे नाम समावणिया, गुरमुख बूझे कत कहावे, सच्चे ठाकर साचो पावे, नानक सच कहे बेनंती, सच मिले गुण गावणिया। माझ महला तीजा, घर पहला, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए, होमे मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावणिया, हो वारी जियो वारी, सतगुर के बलहारणिया, गुरमती प्रगास हुआ जी, आन दिन हर गुण गावणिया, रहाओ मन तन खोजे तां ना उपाए, धावत राखे ठाक रहाए, गुर की बाणी अंदन गावे, सहजे भगत करावणिया, इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साच मिले तां वेखा, नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द वजावणिया, सच्चा सहब सच्ची नाई, गुर प्रसाद मन वसाई, आंदन सदा रहे रंग राता, दर सच्चे सोभा पावणिया, पाप पुन की सार न जानी, दूजे लागे परम पुलाणी, अज्ञानी अंधा मग न जाने, फिर आवण जावणिया, गुरसेवा ते सदा सुख पाया, होमे मेरा ठाक रहाया, गुरसाखी मिटिया अंधियारा, बजर कपाट खुलावणिया, होमे माहर मन वसाया, गुरचरनी सदा चित लाया,
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਸਭ ਤੁਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਤੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਸਵਾਰਣਿਆ ਮਾਝ ਮਨ ਲਾ ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਮਲ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਬਿਨ ਤਕੜੀ ਧੋਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋਈ ਬੂਜੇ ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਜੋ ਸੱਚ ਲਾਗੇ ਸੇ ਆਂਦਨ ਜਾਗੇ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਰਾਓ ਆਪ ਸੁਣੇ ਤੇ ਆਪੇ ਵੇਖੇ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਦੇਖੇ ਆਪੇ ਲਏ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਮਲਾਵਣਿਆ ਪੇੜੀਏ ਧਨ ਆਂਦਨ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਵਸਾਰੀ ਅਵਗਣ ਮੁੱਤੀ ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੇ ਬੱਲਾਂਦੀ ਬਿਨ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ ਪੇੜੀਏ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਜਾਤਾ ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਸੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਜੀ ਉਪਾਏ ਜਿਸਨੋਂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਮਲਾਏ ਕਿਲਬਿਖ ਕਾਟ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਦਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕਿਨ ਦੀਜੈ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਫੁਨ ਦੂਏ ਤੀਏ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਲਾਵਣਿਆ ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਲਾਵਣਿਆ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਆਪ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਚੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਭਿੰਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਜ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ ਇਹ ਜਗ ਭੂਲਾ ਤੈਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਵਸਾਰ ਦੂਜੇ ਲੁਭਾਇਆ ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੇ ਭਰਮ ਭੂਲਾ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ ਜੋ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਧਾਤੇ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤੇ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਰ ਚੇਤੇ ਨਾਹੀ ਜਾਂਪਰ ਵੱਧਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਈ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕਿਚ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਮਨਮੁਖ ਪਾਪ ਪਚਾਵਣਿਆ ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤੁਦ ਆਪ ਲਵੇ ਲੈ ਲਾਏ ਭਾਏ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਭ ਇੱਛੇ ਆਪ ਪਜਾਵਣਿਆ ਹਰ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ ਆਂਦੇ ਰਾਤੇ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਲਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੱਚ ਬੁਝਾਵਣਿਆ ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋ ਮੂਆ ਜਾਪੇ ਕਾਲ ਨਾ ਚਾਪੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੇ ਜੋਤੀ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਸੁਣ ਮਨ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾ ਏ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੱਚ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ ਕਾਇਆ ਕੱਚੀ ਕੱਚਾ ਚੀਰ ਹੰਢਾਏ ਦੂਜੀ ਲਾਗੀ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ ਆਂਦਨ ਜਲਦੀ ਫਿਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਬਿਨ ਪਿਰ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ ਦੇਹੀ ਜਾਤ ਨਾ ਆਗੇ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਛੁੱਟੇ ਸੱਚ ਕਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ ਭੈ ਭਾਏ ਭੈ ਭਾਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਹਿਲ ਘਰ ਪਾਏ ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਰਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਾ ਜੀਠੇ ਰੰਗ ਬਣਾਵਣਿਆ ਸਭਨਾ ਪਿਰ ਵਸੇ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ
मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मलावणिया माया मोह ए जगत सुता नाम विसार अंत भगोता जसनो सुता सो जगाए गुरमत सो जी पावणिया अप्यो पियो सो पर गवाए गुर प्रसाद मुक्त गत पाए भगती रता सदा बैरागी आप मार मिलावणिया आप उपाय धंधे लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए नानक नाम त्याए सच राते जोत दिभावे सो कार करा वणिया माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर के शब्द परख परखाया जिन सच पल्ले साच वखाणे सच कसवटी लावणिया हो वारी जियो वारी गुर की बाणी मन वसावणिया अंजन माए निरंजन पाया ज्योति ज्योत मलावणिया राव इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अत अगम अपारा गुरमुख होवे सो पाए गुरमुख होवे सोई पाए आपे बख्श मलावणिया मेरा ठाकुर सच दृढ़ाए गुर प्रसाद सच चित लाए सचो सच वरते सबनी थाई सचे सच समावणिया वे प्रवास सच मेरा प्यारा किलविक अवगुण काटन हारा प्रेम भगत सदा त्याईए भय पाए भगत दड़ावणे आ तेरी भगत सची जे पावे आपे दे न पछोतावे सबना जिया का एको दाता शब्दे मार जीवावणे आ हर तुद बाजो मैं कोई नाही हर तुद सेवी तै तुद सलाई आपे मेल लियो प्रभ साचे पूरे कर्म तू पावणिया मैं होर ना कोई तो दे जेहा तेरी नदरी सी जस देहा आंदे अनुसार समाल हर रख गुरमुख सहज सुमावणिया तुद जेवड़ मैं होर ना कोई तुद आपे सरजी आपे गोई तू आपे ही कड़ भन्न सवारे नानक नाम सुहावणिया आज महला तीजा सब घट तू आपे भोगण हारा अलख वरते अगम अपारा गुर के शब्द मेरा हर प्रभ त्याईए सहजे सच सुमावणिया हो वारी जी ओ वारी गुर शब्द मन वसावणिया शब्द सूजे ता मन स्यों लूजे मन सा मार सुमावणिया राव पंच दूत मुहे संसारा मनमुख अंधे शुद्ध न सारा गुरमुख होवे सो अपना घर राखे पंच दूत शब्द पचावणिया एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते सरसे प्रभ सेवे अंधन माते मिल प्रीतम सच्चे गुण गावे हर दर शोभा पावणिया एकम एके आप उपाया दिवदा दूजा त्रै पवद माया चौथी पौड़ी गुरमुख ऊची सचो सच कमावणिया सब है सच्चा है जे सच्चे भावे जिन सच जाता सो सहज समावे गुरमुख करनी सच्चे सेवे सच्चे जाए समावणिया सच्चे बाजों को अवर ना दुआ दूजे लाग जब कप का मुआ गुरमुख होवे सो एको जाने एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब सरन तुम्हारी आपे धर वेखे कच्ची पक्की सारी आंदन आपे कार करावे आपे मेल मलावणिया तू आपे मेले वेखे हदूर सब मैं आप रहा भरपूर नानकिया आपे आप वरते गुरमुख सो जी पावणिया माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरले किने चक डीटी अंतर प्रगास महा रस पीवै दर सच्चे सोभा पावणिया हो वारी जियो वारी गुर चरणी चित लावणिया सतगुर है अमृत सर साचा मन पावे मैल चकावणिया रहाओ तेरा सच्चे किने अंत ना पाया गुर प्रसाद किने विरले चित लाया तुद सलाए तू रजा कवहू सच्चे नामे की भुख लावणिया एको वेखा अवर ना बीया गुर प्रसादी अमृत पीया गुर के शब्द तिखा निवारी सहजे सुख समावणिया रतन पदार्थ पलर ते आगे मनमुख अंधा दूजे पाए भागे जो बीजे सोई फल पाए सुपने सुख न पावणिया
ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਰਹੇ ਭੈ ਅੰਦਰ ਭੈ ਮਾਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵਣਿਆ, ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਹਰ ਗੁਣ ਸਹਿਜੇ ਗਾਵਣਿਆ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਵਖਾਣੇ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਤਤ ਨ ਜਾਣੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੁਖ ਨ ਪਾਏ ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਵਣਿਆ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਆਖੇ ਕੋਈ ਆਖਣ ਜਾਈਏ ਜੇ ਭੂਲਾ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ

करता ना होई, तू करता करना मैं नाही जा हुकरी ना होई। मल्हारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या राव, जात मैं जो जोत मैं जाता ककला भरपूर रहा।